0: इसलिए हजफ कर दिया गया है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
2: कुछ मुआ।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीजों में से इंतखाब पूछता है।
3: どれが一番美味しいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: और अब खाने के शौकीन कायतो के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
0: रामेन नूडल्स डिश है। गुंदे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पार्चे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। तहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
0: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब है।
1: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
0: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने ताजा दौर के हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता हासिल की है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इनमें से एक हमले में शादी का जश्न मना रहे दर्जनों लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने इसे युद्ध अपराध बताया है। ईरानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी काउंटी सिरिक में शादी के समारोह पर हुए हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 67 घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को जमकर लताड़ते हुए उस पर संघर्ष के दौरान हमलों में बच्चों सहित नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा कि वे इन खबरों से अवगत हैं और इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। व्हाइट हाउस में

लोग लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने अपने यहाँ 1204 लोगों के मारे जाने और 4200 से अधिक के लापता होने की पुष्टि की है। उधर चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार उनके यहाँ इस आपदा में 21 लोग मारे जा चुके हैं और 540 से अधिक लापता हैं। दोनों देशों में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1225 हो गई है। अपने घर गंवा चुके कई लोग अब भी विस्थापित हैं। अधिकारियों के सामने चुनौती है कि उन तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए और संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए आश्रय स्थलों में स्वच्छता कैसे बनाए रखी जाए। इस बीच स्थानीय मीडिया केंद्रों के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम जिन आपदाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मजबूती से पेश करने का समय आ गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्लेशियर ढहने से ये बाढ़ आई। स्थानीय मीडिया के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों की ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी है कि वे नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि नेपाल मुआवजे की मांग करेगा। आओमोरी प्रिफेक्चर के गोशोगावारा शहर ने बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे ईजुमे नदी और ओदोमारी जलाशय के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आपात सुरक्षा चेतावनी जारी की। अधिकारियों का कहना है कि भारी वर्षा के कारण ईजुमे नदी के तटबंध टूट सकते हैं। ये स्तर 5 की चेतावनी है, जो 5 स्तरीय चेतावनी पैमाने पर सर्वोच्च है। शहर प्रशासन लोगों से अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखते हुए अपनी जान बचाने के लिए आसपास की इमारतों में शरण लेने, अपने मकानों की दूसरी या उससे ऊपरी मंजिलों पर जाने और ढलानों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने जैसे आवश्यक कदम उठाने का आह्वान कर रहा है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस मध्य अफ्रीकी देश में जारी इबोला प्रकोप से मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। मई से ही इबोला के मामले मुख्य रूप से पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में फैल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि इस महामारी से 6,186 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,007 लोगों की मौत हो गई है। मृत्यु दर 48.6% है। ये महामारी मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों सहित 6 प्रांतों में फैल चुकी है। उत्तरी प्रांत किवू के एक स्कूल में मंगलवार को नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के समय स्टाफ ने बच्चों से अपने हाथों को कीटाणु रहित करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रायसिस ने बुधवार को इस महामारी को अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप करार दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई लोगों की मौत हुई है जिनका इलाज उपचार केंद्रों में नहीं चल रहा था या जिनका नाम ज्ञात संपर्कों की सूची में नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संक्रमण की ऐसी चेन मौजूद है जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। WHO का कहना है कि ये प्रकोप बुंडी बूजो वायरस के कारण फैला है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है, हालांकि ब्रिटेन और कनाडा में 2 नए टीकों के सुरक्षा परीक्षण चल रहे हैं। जापान के कृषि मंत्रालय ने आलू किसानों के लिए एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित कर अमेरिका के एक अनुरोध पर जापानी प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। गौरतलब है कि अमरीका ने जापान से ताज़े अमरीकी आलुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। जापान में फिलहाल कीटों व बीमारियों को लेकर चिंता के कारण कच्चे आलू के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन पोटैटो चिप्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ आलुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। बुधवार को आलू उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होक्काइडो के ओबीहिरो में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें बताया गया कि मंत्रालय ने उन बीमारियों और कीटों की पहचान लगभग पूरी कर ली है जिनसे निपटना आवश्यक है, और वो अगले

0: चरण में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारी मोचिज़ुकी मित्सुआकी ने कहा, जापान और अमरीका वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस बात पर चर्चा करेंगी कि किस प्रकार के निवारक उपाय अपनाए जाएं। इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या वे उपाय वास्तव में प्रभावी होंगे। आलू किसान मौजूदा नियमों में बदलाव होने पर अपनी फसलों और खाद्य सुरक्षा को होने वाले जोखिमों को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।